दूसरा भाग जी आकाशवाणी जमशेद अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आप सभी

प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री

तमिलनाडु में तमिल का वैश्विक निजाम पीढ़ी के पार्टी प्रमुख श्री जोकर रेड्डी आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को

सभी जन शामिल हुए। पार्टी नेता ने कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीएम रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगास्वामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों,

मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड

के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में

कम कठोर नहीं होंगी। शुभ धातु में नहीं वरन दूरियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और भक्ति संगीत।

प्रकारों की बंदिशें प्रावधान आ कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकर जाए गायन सहभाग अनुजय जोकर जाए तबले पर संगति है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनाम ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा

समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2 बजे आलोक और स्वर शैतान कपूर का प्रतिक्र पाठ करना। कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के संचार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः

feet. I believe the gestation period shouldn't go for free. You need to have people start. If you're going to start on an intervention everywhere, आप को भी हमारी इबादत का इंतजार जरूर होगा तो जुड़ी हुआ इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट द्वारा दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन शहीद जन की आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे

कोच में सभा दो अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है पी एस कृष्णस्वामी ने निर्देशक महेंद्र मोदी उजाले उनकी यादों के सितारा पंकज सिंह ने ये कार्यक्रम निर्देशक रमेश शर्मा

We had engine that is over some of the shadows for that weakness or some strategy we feel that Manami can use. Sandy Cookie Short is out top. Mahavi Chakra, Lexington, Colonel, Cookman, Chemistry. Indrajanush brings in new stars or Avaz, Bodhpuri, Vadak, Parasna. Sadhish the Pantalis Night Hoga is very contestable. हवा महल के अंतर्गत सुनी हर सुनाटिका यात्रा ब्याह लाल थी लेकिन कल्पना सिंह निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का चित्रों कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर समाचार संध्या 8:45 पर आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे और कार्यक्रम का समय होगा रात 10 बजे आलोक हॉल पर जुनेद खान का प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम होगा रात 10:30 बजे और रात 11 बजे ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब श्री रामचरित मानस का भाव इस प्रकार आपकी प्रस्तुत

गुलाब कर रहे हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसमें जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सत्य शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए तीर्थ भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उतर जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

0: सारी आकारों की बंदिश है। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जगरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कल्पना जी, आज की इस कड़ी में हमें बताइए सबसे पहले कि बंदिशें तैयार कर रहे हैं, विषयों का चुनाव किस तरह से किया जाता है और ज्यादातर किन भाषाओं में बंदिशें तैयार की जाती है?
2: जी, भाषा तो अक्सर हिंदी और जी ब्रिज बोली में अधिकतर पाई जाती है। कुछ कुछ राजस्थानी, बिहारी और मराठी भाषा में भी कई बंदिशें बनाई, पंजाबी में बहुत सारी बंदिशें बनाई। तो उस स्थान का भी असर होता है बोली पर। तो भाषा बोली भी अलग अलग थोड़ी हर एक कलाकार के आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल जाती है। और उसके साथ साथ विषय जो है वो भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति से संबंधित वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, उत्सवों का वर्णन और गायन वादन में जो महत्वपूर्ण मूल्य है उनके बारे में भी कई बंदिशें बनी हुई हैं। तो ऐसे हर कलाकार के बंदिश बनाते समय जो आगरा जयपुर घराने की गायकी आपके गायन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपने भी कई रचनाओं का निर्माण किया हुआ है। तो आज कुमुदिनी जी ने बनाई हुई राग विलास खानी तोड़ी में मैं एक बंदिश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। 3 साल में बंधी हुई ये बंदिश है। कैसे समझाऊं, विलास खानी तोड़ी इस नाम से ही हमें प्रतीत होता है कि ये राग तोड़ी का ही प्रकार होगा। इसका ठाट जो है भैरवी ठाट है, क्योंकि इसमें अधिकतर स्वर भैरवी के ही लगते हैं

रचना की और बड़े सुंदर अंदाज में आपने प्रस्तुत किया, जो कहें कि मोहित कर लिया अपने गायन से। अब बताइए हमारे श्रोताओं के लिए अब क्या प्रस्तुत करेंगे आप? कुमुदिनी जी की आवाज में उन्हीं की बनाई बंदिश राग भैरव में प्रस्तुत करते हैं। ताल तीन ताल एवं शब्द है शंभो गिरिजापति।

Sí, iPad.gt es Cincinnati, así sería. Amantes de la paz, Gaita, BBC, Telcomanjo Cartel. Apsupasti se registró, Mantasun. Gayan se va a grabar, Anujay Jokar Cartel. Tabla Sangati, Yoki Bhagwati, o Harmonium Per, Janeshwar Sunwani. Apsu Batadi, es Cincinnati, Tecniki Sahyogi, Bhavana Sundar, o Kiran Bani. संपादन सहयोग झरना श्रीलंकिका और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री।

00 24 76, तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। और इसे आपको सुनाते हैं मंजिल प्रियंका जी की आवाज पंकज मलिक की, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है आरती बारोली।

अपने आप कम ही सुन पाते हैं, इसलिए कि आपके लिए जटिल भार की बरफ सताई किए जाते हैं। तो चलिए इसी तारतम्य में सुनते हैं मेरी अगला गीत। फिल्म का नाम है भार। इस गीत को गाया है पंकज मलिक ने और संगीत है सुरेश चौधरी।

0: हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: एनसीपीसीआई आयोजित

0: राजस्थान जयपुर में खेतों किया कूलर स्पन का दौर था हमारा।
1: विभिन्न भारतीय परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था। टीम का जॉब भी जिसने मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को संवारने और चर्चा करने का अवसर दिया।
1: कुछ
0: मैंने पढ़ा कितनी उड़ान भरती है परिंदे में जाना थे और जब जिस भी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी शायर के साथ नहीं हुआ

they say under 50, not under 70,

của mình.

बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की जोड़ ममतामयी माँ से बंध जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसके कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार झलकाती मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते ही खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास

सबक को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ जरूरतें उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है, जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

के लिए खुद की वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। ममत्व का गहरा समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जटिल से जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।

para ele.

what's

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का

का गाया ये गीत साथ दिया है तन्वी शाह और डेनी क्विंस ने, और इस गीत को लिखा है मयूर कुहिया ने, सागर जगह का संगीत।

York. From here, at low heat, मां एक ऐसा शब्द जिसमें कोई दुनिया का सुकून छिपा होता है,

0: कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया और एक लड़कपन का दौर था हमारा विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। एक्टिंग का जॉब भी मिले मुझे इसी तरह से इन चीज़ों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। मेरे पास सारे कितनी उड़ान बाकी है पर इंदौर जाना बाकी और दिल्ली युद्ध के साथ शुरू हो किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
1: आपकी रहमान

पर किया करते। सिद्धार्थ वर्मा ने लिखा है और इसकी धुन बनाई है कवि पारिक, साहिल, प्रतीक और संजीव के लिए।

0: मार्ग नई दिल्ली तो चिट्ठी भी भेज देंगे आपको सुझाव देंगे जरूर मुझ पर पहुंच जाएगा मैं जरूर उसको
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नहीं चले मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1100
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपकी मन की बात भी

planning to see Swiss love and impact became to him.

God, you'll lead God to bring you back.

के पावर फुल सुपर वुमन माँ को हमारा दिल से सलाम।

जब आंखों देखे हाल से लेकर आपके संवाद

monkey.

इतिहास के बारे में है जानकारी तो मैंने ये जानकारी हासिल की कि पुराने जमाने में ना एक लिपि होती थी, उसे पांडुलिपि कहते थे। और वो जो पांडुलिपि होती थी वो

cool, but she was 16.

और जब आप जाते हैं, याद रखिए मुझे इस छोटे से संचार के बारे में।

presented.

बजा मुंबई चार शून्य शून्य शून्य नौ एक वैशाली भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 4000

بچپن کا دور تھا ہمارا،

धन्यवाद।

0: papás, que los pone a trabajar.
1: Es una meta de trabajo.
0: Oh, si se me colega a cambiar, que me va a dejar, Raúl, a pisar, estar y cambiar, vamos a la suave que es seguir a trabajar.
1: तो शुरू में सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है वाक्यांश कि समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीरानी, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झलक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। कुछ गीतों में माँ की मीठी लोरी

सब कौन सा तराना खेले वो ही जाने, बस उसकी सुर मुस्कुर मिला कर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का विचार। फिल्म का आज की भारत और इसमें से आपको शब्द सोचते हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं सकता है। वैसे काफ़ी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही सवाल लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की भारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे

शब्द समय हर पल दुनिया का मेला गीत बहार पायल कभी तन्हाई माँ की मीठी लोरी जीने का दिल नगमा फसाना कौन सा वो ही जाने सुर चलती रहे जिंदगी इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है। स्वरों के समंदर को लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीरानी में बाहर की पायल से झनकती ही रहती है। सोचिए वे गीत कितने मधुर और मीठे होते हैं जिसके एक एक शब्द में माँ की मीठी गूंज बसी हो। माँ की गोद में लोरी की तान जैसे सास और सागुंदे एक जान एक से हो जाते हैं। यह अनंत यात्रा है जहाँ दिल से दिल मिलाकर शुरू के साथ चलते हुए हर कदम पर संगीत की विविधता और मिठास बिल्कुल माँ के आंचल की है प्यारी और पूर्णा में। क्या बात है, कितना खूबसूरत मैसेज। और आज अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे भी मनाया जा रहा है, मातृ दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारे श्रोताओं सभी शब्द सुने जा सकते हैं लेकिन एक शब्द बिना झिझक सुन रही हूँ वो है माँ और लोरी। बिल्कुल रोना चाहिए। और एक और श्रोता ने कहा है हम धीरे धीरे चलने को कहते हैं तो भी वो अपनी चाल में चलता है। जब जब जो जो होना है तब तब वो होती है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, इसे ना हम बदल सकते हैं ना आप। हा हा हा क्या बात है, ये तो बस आनंद का संवाद नहीं हकीकत है। हमें के सामने गम काटनी है जिंदगी अपनी, जाने वो कैसे लोग हैं जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब पंजा मांगी सातों का हार मिला, नसीब में जिसके पे लिखा है वो ही मिलेगा। आपको उन्हें उन गीतों का सुरीला सफर पूरा करना है जो मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपकी फरमाइश से जो आपके गीत सुने हैं उनमें से भी कई सारे गीत शामिल हैं। देखिए तो जरा कौन सा गीत पहला बना है। और हाँ एक सवाल है, सवाल कुछ यूँ है कि घड़ी बनी और एक वक्त था जब उसे सही तरह से देखने की भी ट्रेनिंग होती थी घर पर। जो सबसे मुस्तैद शिक्षक होती थी वो होती थी हमारी माँ।

Bu pazar iş çalışırsanız da bizi intizar edin.

योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान प्रज्ञा जिला योजना का लाभ देने में बना अग्रणी। माताओं को नमन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा खेल समर्थ और राज्य के काफी बारिश और वर्षों और संस्थान की रंगदारी विश्व कप में भारतीय महिलाओं के

Thank you.

Thank you.

Thank you.

taking

तो बात

स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुक्कू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है। भाई घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी का भी उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां ही आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया सूर्यनाथ के पास जिसे मखमली स्वर संगीत से सजा संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में स्वर में शैलेंद्र जी का लिखा कारगर्भित गीत। श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे घंटन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। हमारे टीचर ने घर में टाइम देखा सिखाया था। हमारे घर एक टाइम टेबल होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सभी से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। पर एक सवाल और है कि बैकग्राउंड संगीत बताइए और जरा इसका सुनकर बताइए।

श्रोताओं ने लिखा है जया भादुरी और संजीव कुमार ठीक है इस फिल्म में। अब मदर्स की बात है तो हमारी श्रोता कहती है कि आज मदर्स डे भी है और आज निर्भरता की घड़ी की बात तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए।

को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है, क्या बात है। एक और साथी कह रहे थे आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ। जी हाँ, घड़ी पर हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक छोटा सा है कि सुनीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक

सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था। उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखा तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगली गाने में। लेकिन एक संदेश और है, हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे, जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारे श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं, पटते क्या

श्रोता कह रहे हैं कि जब घर की गली इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल के तमाम लेकिन जनता खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अभी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी। पैनलों वाली बड़ी सी बकरी की घड़ी और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने इसे मेंटेन रखा लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। मोबाइल हाथ में ले लीजिए तो घड़ी तक मुझे अंदाज होता है। एक और जर्मन से ताला बनाने वाले पीटर हैमले ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना दी थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने घड़ी देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उसमें बचकर उसने मिले। और एक और संदेश में गुजराती के कहावत है, माँ के माँ बीजा बागड़ा लावा, मतलब मेरे आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ फूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ उन्होंने लिखा है उसमें कुछ फूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख दीजिए कृपया। और एक छोटा कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय का कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सीधे सफर पर, मदद से की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर लाऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी लो क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक मैं रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा संदेश, अम्मा तो गोंद की तरह होती है जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बना कर देगा। वही हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओ के लिए ढेर सारा प्यार दिया। और अब अभी अच्छा जा रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए, बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उसका जवाब

हकीकत और लक्ष्मीकांत प्यारे महल का संगीत बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में ही बात की है। एक छोटा कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जो हमें सिर्फ एक बार मिलती है वो किस्मत वाले होते हैं जिसकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे केएल सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत भी डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक छोटा कह रहे हैं कि मोबाइल में घर आने के बाद लगभग सब हो गए हैं और इसमें संदेश ने कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे करता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और सोचा संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल ड्रॉप होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी इसको देखकर। अपनी पहली घड़ी में अपनी स्कॉलरशिप के पैसों से खरीद सोचा कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है।

Walking.

से एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल है। समय का सुधर पर बदलता रहता है, कभी इसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी बिरानियों की चुस्की, कभी मिलन की बहार झलकती है तो कभी तन्हाई की गूंज,

छुपाई हुई चेस्कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती है। डिनर से पहले किचन में हमारी टोली पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चक्कर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत सफर समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की। उन्होंने हमें अनुशासन की जाग में तपाया

की भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की जीते। उन्होंने हमें अनुशासन की साध में तपाया ताकि हम कुंदन बन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाले हुआ चरित्र दरअसल उनकी उलटी हुई नसीहतों की देन है। उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान से

छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छाँव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह न

सुनने वाला संदेश है। लिखा है कि हर हिस्से ने मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता ने कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि नमानताओं की दुनिया का कोई हिस्सा छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सुनने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांटिए, ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस

शहादत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेजे बिल्कुल भेजा आपने बहुत बहुत शुक्रिया। माँ के नाम बीजा बगड़ा नामा, मतलब माँ के आगे

कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में। अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में माँ बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है, माँ बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने

चैप्टर 15 में ऐसा बात है, दोनों काटे एक ही में है, ऐसा बात है कि जब आप

इजाजत देने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की पूरी निर्भर बने विविध भारत।

होता है उसकी माँ। जिसकी ममता एक बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। माँ और उसके बच्चे का नाता सिर्फ जन्म का ही नहीं, सांसों का नाता होता है। एक बच्चा अपनी पहली सांस माँ की कोख में ही लेता है और तभी से उसके जीवन की डोर ममतामयी माँ से बन जाती है। जाने कितने दर्द सहती है वो माँ जिसकी कोख में पलने वाला बच्चा जैसे ही दुनिया में आता है उसे देखते ही अपने सारे दर्द भूल जाती है माँ और चमकती आंखों से प्यार झलकाती मुस्कुराती अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लेती है। छलक पड़ते हैं खुशी के आंसू उस माँ की आंखों से जो स्वयं ममता का अथाह सागर है। उसकी कोख से जन्मा बच्चा उसकी जिंदगी को खुशियों और उल्लास से

संपूर्ण जगत को स्वयं में समेटने की ताकत रखता है और माँ के आंचल की छत्रछाया में जीवन बिताने की कामना हर कोई करता है। बच्चे की खुशियाँ, जरूरतें, उसकी आशाओं और अरमानों को पूरा करने में अपना सारा जीवन बिता देती है माँ। बच्चे की गलतियाँ हों या भटकाव, बहुत प्यार से उसे वो राह दिखाती है जो बच्चे के जीवन में बेशकीमती और सुखदायी होती है। माँ अनमोल है, अतुलनीय है, जिसका हर एक बच्चा उसकी आंखों का वो तारा होता है जिसकी एक मुस्कुराहट से उसकी सुबह होती है, जिसके लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द होता है माँ, जिसे सुनकर दुनिया की हर माँ निहाल हो जाती है और अपने आंचल में समेट लेती है अपने जिगर के टुकड़े को।

0: चिंता निस्वार है। बच्चे के लिए किसकी वो छाया है माँ, जिसके तले बच्चा स्वयं को सदैव सुरक्षित महसूस करता है। हर बच्चे को माँ की ममता का वो आंचल नसीब हो, जिसकी छत्र छाया में उसका मासूम बचपन खिलखिला उठे और संगीत के सुरों की तरह रस बरसाता आगे और आगे बढ़ता ही जाए। ना उम्मीदी में भी उम्मीद का दिया जलाने वाली माँ और उसकी ममता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मनुष्य का विशेष समंदर है माँ का आंचल, जिसका आशीर्वाद जितनी जटिल समस्याओं को भी सुलझाने की ताकत रखता है। माँ अतुलनीय है, पूजनीय है। इस धरती पर ईश्वर का रूप है माँ।
1: कुछ तो नहीं

पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभात पठन की पवन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार,

order for something to be had,

सुल्तानपुरी ने धुन बनाई।

0: साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक उलड़पन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था, टीम का जॉब भी, इसलिए मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को हमार दे और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बीस साल
0: मैंने पढ़ा मैंने कितनी उड़ान रखी है, पर इंडिया में जाना थी, और जब जितनी युद्ध के साथ शुरू हो गए कि किसी शहर के साथ नहीं हुआ।
1: आपके मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

से है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। बोल मजनू सुल्तानपुर के हैं और संगीत से सवार।

अरब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं।

और इससे वो काम करते हैं।

son manchados de

सजाए आपका कहे तब उर्जा मन जहगीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजूल। आप सभी को सादर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। मन जही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम बता दें कि बड़ा ही प्यारा सा गीत सुना है हमारे पहली पेशकश के रूप में हमारे इन सभी साथियों ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, विधक अब्बासी और सहनबाग

थे, गीत लिखा था हसरत जैसी ने, धुन बनाई थी शंकर जैसे ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को, याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहर टाउन राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरविंदर सिंडा, जसवीर, जसवीर, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान की बोल, राजेश रोशन की धोनी,

बदल जाता है जब कोई हौले से अंदर दिल छूट जाता है। अब दिल छूटते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है। जो आ रही है इस गीत के साथ आंखें चुन कर गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल धर्मी ने और संगीत रचना रवि की है।

अच्छा करिएगा ना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत गति किया गया।

के इस गीत के साथ ही अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, मिलेंगे दोबारा।

करें। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम।

0: बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
1: कहिए माँ जी।
0: ये बात किसी को मालूम न हो, इस रहस्य को तुम प्रकट न होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको ये रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
1: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
0: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भर कर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सभी बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवाजन, तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी। करोगे ना
1: माँ जी? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, जरूर करूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
0: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा। ये लड़की नीमा
1: जी, आप कैसे कैसे रुक क्यों गए, कहिए ना।
0: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ। ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ। अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल पड़ूँ, तो तुम उन दोनों की शादी करा देना। करा दोगे ना?
1: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
0: मेरी बात याद रखोगे ना?
1: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
2: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
3: हाँ भैया सिंगारम, बात बहुत बड़ी है। अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
1: लखपति? अरे क्या कह रहा है,
3: जरा गंभीर मामला है। और देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो, तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो। वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
2: लगता है हमारी दूर दारू फिकर आया है। अबे सच कह रहे, नहीं तो मेरे हाथों कुछ देखे बहुत पड़ेगा। तो
1: हमारे 10 लाख रुपए है कहाँ, और उसके साथ उस दाची का क्या संबंध है?
3: बहुत गहरा संबंध है। वही 10 लाख रुपए हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ाने जाएगा।
1: क्या कहा, क्या कहा? नीला को भी उड़ाने जाएगा?
3: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की और चक्कर लगाया करूँ। उनके मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था। मैं छिप कर खिड़की के पास खड़ा हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
2: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने ये भी बताया था कि उसने धन कहाँ गाड़ रखा?
3: वही तो मैं सुन नहीं पाया। उस वक्त पास से दनदनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
2: जब मैं डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा, तभी चैन की सांस लूंगा। अपनी बहन और
3: भैया नहीं, फोन करके जेल जाने से क्या फायदा? अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
2: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिव का इसी चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिव कामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है। और ये ताजिया कंद स्वामी और मीरा दोनों को पानी की आशा से वहाँ मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है दोस्त। इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे

0: मुद्र हुआ है। सब कुशल मंगल तो है, क्या किया जाए कंद स्वामी। मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, सार को लेते वक्त मैं

是不是去到俺们乡去的分头的。

0: प्रश्न और कहते हैं,
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का दान है?
0: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। सार का नाम सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
0: नहीं तो
1: ये सार मेरे हाथ में दे दिया, मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये सार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला दार देने की क्या जरूरत थी?

0: आंखों में ये आंसू क्यों?
1: कुछ नहीं माजी, मेरी आंखों में कुछ धूल पड़ रही है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
0: तो चले क्या? अच्छा

केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।

0: तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
1: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ, अच्छी से अच्छी दवा खरीदकर भेज देता।
0: मैं कह रही हूँ तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती है, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो।
1: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ, मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
0: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
1: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
0: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
1: कंद स्वामी कौन?
0: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
1: क्या कह रही हो माँ, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
0: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि गंज स्वामी आ रहा है या नहीं। नानी माँ आज कोई नया डॉक्टर आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, इससे वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे। कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर ले, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बच्चा।

0: पहुंचने लगा तो तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का काम भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर। अरे भैया आगे तो सुनो, तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया। तुम हाँ भैया, पर तुम्हें तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मसला हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब तक साबित कर दिया है।
1: तो इसका मतलब है कि मीना ने भी उस पर विश्वास किया होगा। मीना ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: और नहीं क्यों नहीं, इसने आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेद बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी मीना से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: ऐसा नहीं हो सकती, पर हमारी जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिया का खेल आगे न बढ़े।
0: मैं

0: what the heck? Oh, it's pink.
1: God, Nila. But Joey told me, like, she has mock of her head.
0: Well, it's pink doctor के यहाँ गई है. लेकिन मैं पूछती हूँ, आज पिंक का क्यों खड़ा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ.
1: What nonsense. ये क्या कह रही हो?
0: बस बस बंद कीजिए नाटक. मुझे सिर्फ मालूम है, जल्दी से ये बनावटी मुझे और मत

0: हाँ, फिर रख लगा रखी है। एक्टिंग कर रहा है दासिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
1: कौन? ओहो सिंगा।
0: हेलो
1: हाँ दीदू
0: यू सिली कंट्री ब्रो।
1: आई मीन अंकल।
0: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है? क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता? चोर चक्का कहीं का
1: अंकल, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं चोर चक्का हूँ?
0: हाँ हाँ, डॉक्टर से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछें और

समझ नीला को झुका दे सकता है, लेकिन तू इस सिंगारम की आंखों में धूल नहीं डाल सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है। तूने उस तार का असली मजबूत सम्मान को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेस बना कर चलाया। आसानी से तूने शिवकाशी के जमीन में खड़े सच्चा पता लगा लिया। बोल कहाँ है वो धन, कहाँ याद रखा है तूने उसे? पहले ये बता दे, भाग दो चाहे तो कुमार स्वामी के एक दिन कर, चाहे कर्ण स्वामी की, मुझे कोई

0: आसानी से तुझे शिवकाफी के जमीन में कर सकता पता लगा लिया। बोल कहाँ है मुझे कहाँ यार बैठा है तुझे पहले ये बता दे बाद में चाहे तो कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कर्ण स्वामी की मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल वो जमीन में बड़ा धन कहाँ है
1: जमीन में बड़ा धन अंकल सिंगाराम ये तुम क्या बेपरवाही उड़ा रहे हो।
0: सब जान अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे।
1: नहीं तो उन्हें भी जरूर कर जाएगा

0: स्वामी ने कहा है, तुमने कुमार स्वामी को
1: स्वामी ने तुमने मुझे गलत खबर दे दी।
0: तुमने तो नहीं कहा है दाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपना खून से लखपत कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा भाई, तू भाई के पति को कर्मी स्वामी के पास भेज, उसे कहना दे कि शिव कामी बहुत बीमार है, उसको फौरन बुलाया है।

0: अच्छा किया जो आप इस गंध स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं। नीला देखो तो कौन आया है।
1: क्यों गंध स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे?
0: मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊँ, उस दुष्ट श्रृंगारम ने ऐसी क्या जली कि
2: जो होना था तो हो गया। श्रृंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है। उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना श्रृंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐसे मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता। मैं तो बार बार बोलता,
0: देखो गंध स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
2: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
2: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मुझे क्यों माफ करो, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
2: आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसलिए मैं बुद्धिमानी है। पोस्ट मास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: नहीं, मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं गंध स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस गंध स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों गंध स्वामी, मंजूर है?
2: लेकिन आप नीला से भी पूछ कर।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारी,

Jesus.

जिनसे बात करता हूँ, एक दो दिन में उनसे बात कर लूंगा, फिर हम लेते हैं जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने बात की क्या था, उन्होंने कहा खुद बेटा करो, क्यों नहीं करो। ओहो, मैंने कहा ये भी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे। नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो। अभी मेरी जरूरत हो जाओ आप नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूँगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इसमें शुरू, क्या होगा अभी ड्रिपर लिए नहीं थे हमें, अच्छा कुछ नहीं था खाली सभी ये बिटू सागर साहब भी थे, कोई नहीं कुछ किसी को लिया नहीं था हमें पैसा। अभी बातचीत शुरू हुई जी, तो इसने जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक रात की बात बताता हूँ आप कितने कहेंगे। बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। ओ बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। उसका यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, वो रमन किसका के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें, और जावेद साहब गाने लिखे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे, जयंत चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे।

0: के भी मुझे इजाजत में बाजा ले जाते हैं और हनी मेरी अपनी फिल्म भी थी इन फिल्मों में जी बथेरा में सुनी थी।
1: अच्छा
0: हाँ तो हमारे बाकी लोग भी हमारा ऊपर कुछ ठिकाना नहीं था कहाँ जाए आज दोपहर कहाँ मिले तो अमृतसर के लोग वहाँ पर बैठा करते रमन राकेश रेड्डी अवतार गिल भरत कपूर हम सारे लोग वहाँ जाते इनके हॉल में बैठते थे चाय वाय पीते थे गपशप मारते थे एक आध वीडियो पर पिक्चर देख लेते थे जमाने में जो भी एच एस होता था और चले जाते थे तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं उन्होंने कहा जी ये ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश ग्रोवर की तरफ से और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और ग्रोव तो बोले भाई देख लो अगर तुमको मेरे फिल्म फिल्म करनी है तो मैंने जोर से कहा उन्होंने कहा भाई हमारे लिए आपस में गलती नहीं है कुछ गड़बड़ है अच्छा हम अक्सर ही जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है
1: जी जी
0: तो मैंने कहा भाई देखो आइटम तो बहुत अच्छे हैं अलग हो गए हैं गालत को नहीं दिखते हैं तो अब बाकी देखने की चीज़ें अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए उनकी पिछली पिछली जो लिखी थी कहीं जाएंगे उसमें कुछ हुआ था जैसे हॉस्पिटल में दोस्ताना थी या कौन सी थी दोस्ताना ज्यादा हुई उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोर साहब ने और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला जैसे मुश्किल होता है ना परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट दुश्मनी दुश्मनी थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया मैंने इनको एक कहा यश जो कोई पॉइंट बोला जिस लिए उन्होंने बोले देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछले टीचर में तो उन्होंने 10 लाख दिए तो उन्होंने 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे उन्होंने गाने तो मेरे नाम कुछ भी लिखे मैंने कहा सोच लीजिए मेरे साथ साथ वाले गाने उन्होंने बड़े अच्छे बनाए
1: जी जी जी
0: देख लीजिए आपको 5 लाख में सब चीज़ें मिल जाएंगी जो बख्शीश आपको आप खुश देते होंगे अगर आपको प्रूफ करता है तो उनको एट बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल गए मैंने जावेद मिल रहा जिसमें गाने भी मिल गए तो उन्होंने कहा ठीक है तो उन्होंने उनसे बात की भाई आप कैसे 5 लाख लेंगे हाँ लूँगा 5 लाख मैंने मैंने देख के कह दिया था मैंने जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने में से लिखूँगा अगर चाहिए होता मैंने कहा था मक्खी जी को मक्खी जी लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता तो ओके हो गया फिर गाने हो गए अब कहा उन्होंने कहा गोरख कर लेंगे बोले क्या काफी होनी चाहिए उसका दिलीप कुमार
1: अरे बाप रे
0: और ऋषि कपूर होनी चाहिए रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी ऐसा ऋषि कपूर की कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल तो हो गया बोले आप अगला स्टेप सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए सब्जेक्ट मिल नहीं रहा टाइटल सोचने लग गए ये टाइटल वो टाइटल दुनिया पे आकर रुके दुनिया टाइटल बोले चलो मुहूर्त करते हैं मुहूर्त कर डाला था और कहानी नहीं है कहानी नहीं बाबा मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में दुनिया भर के लोग आए सारे
1: स्टार
0: लौटा दिल साहब यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने और बजट बोलने के लिए और भी जो हमारे एजेंसी के दोस्त सारे जमा हुए थे तो

0: पसंद करे सबसे तो वो सुन करेंगे, लेकिन जो मान गए ये जो उसकी भी इज्जत करते थे मान गए, पुराना आदमी है जो भला आदमी है। अब सब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे, समंदर के किनारे कहानी ढूंढ रहे, कहानी ढूंढ रहे क्या बोला वो सब्जेक्ट वो तो बन चुकी है, वो तो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरल ढूंढ रहे। हाँ
1: हाँ
0: तो सब ऐसे करते करते कोई इस सब्जेक्ट को ओके किया।
1: हाँ
0: उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आप चाहिए हो तो आप ले सकते हो उनको। अरे भाई सर उनको अच्छा उनका रेट ज़्यादा हो गया, वो दूसरों के बदले पर चले गए। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के सिलसिला वाला काम सिलसिला वाला काम शुरू कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात ये कभी पिक्चर बना दे, वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वो वाली शक्ति, नहीं शक्ति नहीं, इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था,
1: मशाल
0: मशाल मशाल का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया होता, ओ मैंने ओके किया होता,
1: ये जी ने देखी वो,
0: और वो मैंने ओके किया, मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया। जावेद साहब मैंने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को सुना दें
1: जी,
0: उन्होंने यश जी को सुनाइए, यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ जाए। अब मैं कैसे बोलूँ कि
1: मैंने ओके किया,
0: मैं नहीं बोल सकता था
1: जी,
0: उनको भी नहीं बोल सकता, जावेद साहब को नहीं बोल सकता था, मैंने हिम्मत नहीं थी, आज तक नहीं बोल सकता हूँ जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने

0: छोड़ा, दुनिया का यही कार्य किया। थोड़े दिनों के बाद दूसरा जन्म, और फिर ये शवाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर में, शायद कौन सी पंख अपने थी, कपूर क्या जैसे हमारा फॉरन में चला गया वो देखा अपना भंजा चला गया, शेखर कपूर, सॉरी सॉरी शेखर कपूर, नामों में आजकल मैं बहुत गड़बड़ होती है, शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी।
1: हाँ
0: कहीं
1: हाँ
0: कहीं देहरादून जाओ साहब, कहीं ना तो जाओ साहब के साथ जो शूटिंग थी, तो जाओ साहब लिखने वहाँ चले गए शवाना के शूटिंग, और 34 सीन लिख के आ गया वहाँ से, और आके हमको सुनाए बहुत अच्छे सीन थे बढ़िया, लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ। उन्होंने कहा भाई अब मैं रूटीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लेकर आता हूँ, तो तुम यार अपने दोस्त हो तुम समझ सकते हो ना, तुम शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्वेंस करेंगे 34 साल टीम से शुरू कर के पिक्चर, मतलब खासा मेरे दिमाग में क्या है फिल्म पे क्या है, मुझे फिल्म पे सुना दिया उन्होंने, तो ये हम चलते दिलीप साहब से फॉर्मेलिन पर सुना के, तो फिर रॉक बुक किया गया। अच्छा वहाँ पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा, अरे बाप रे उनका टाइम है जो थोड़ी इतनी देर सुन सकता हूँ, इसमें जो उन्होंने सुना है उन्होंने पहले जो उनकी थीम तो पूरी क्लियर थे वो सारा सुना दिए, आगे के थीम सुनाए उनकी कुछ एक एक्सप्लेनेशन जो आई, उन्होंने कुछ आर्गूमेंट दिया, कोई नहीं कोई नहीं, जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था, वो फिल्म ले लेंगे वो फिल्म मेरा ठीक है जो दिलीप साहब और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरी फिल्म देते थे, कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा तो मैं 10 बजे साइड पे ला करूँगा,
1: वाह वाह
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वाकई ऐसा होता रहा, वो देते रहे करते रहे और ऐसे हम वो फिल्म थी दुनिया दुनिया

0: कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग ली हुई है, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: मेरा फिर फिल्म करना है, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडित झुककर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़ी मेकअप है,
1: बहुत बड़े मेकअप मेरी फिल्मों के मेकअप मैंने थे। और जब मैंने नूरी फिल्म प्रोडक्शन की प्रोड्यूस की तो सबका चेयर था, उसमें पंडित झुककर का भी चेयर था।
0: बाबा
1: पर से
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% जय चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सभी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनोहर कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे जो जैसी ने 10% करवाई, क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% रेट नहीं अच्छा लगता, तो मेरा नहीं

0: 5% के भी उनका सीनियर कैमरामैन, 5% फंड रिजुकर और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडलिंग करते थे वो आते थे।
1: जी जी जी
0: गजब। और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा फंड रिजुकर की 3-4 महीने उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है। वासिफ वीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
1: ओहो,
0: मनमोहन किसका बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले लूडी बनाने वाले थे जिसमें वैजा रमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
1: अच्छा,
0: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिखी थी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी, तो कुत्ता हीरो है तो वो उन्होंने शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वैजा रमान जी के लिए बनाए, वैजा रमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर हो,
1: प्रदीप को लेकर,
0: प्रदीप को लेकर, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे और जावेद अख्तर साहब के फादर के गाने थे, जानेदार अख्तर साहब के गाने वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यशजी को सुना दिए थे। तो भाई उनको वो तो रिजर्व करते हैं 10%,
1: हाँ
0: तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडित डुक्कर ने और बहुत मेहनती है और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो मेरे साथ में मेरी मीटिंग रखी, मतलब मैं चला गया मिलने, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
1: ओह क्या बात है,
0: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
1: जी,
0: वो पंजाबी हो वहाँ से थे पिशावर के
1: जी
0: उस तरफ से, और मैं बफा हैदराबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा,
1: अच्छा
0: जा रहा
1: जी जी जी,
0: उसी लिए वो सागर यार है, सागर यार है साथ में
1: आएगा।
0: तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूँगा जरूर करूँगा, उस तरह पूरे भी अच्छा है आदमी अच्छा है, या फिर करूँगा जब देख मैं पहले पूरा करूँगा उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आएगी वो कहूँगा। कहा जी वो ऐसे सुनील जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ।

0: बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो फील उसी दिन मिलता था, दूसरा फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था, एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं, अगले दिन राइटर साहब बिजी होते थे,
1: जी,
0: तो मुझे वो थोड़ा सा अनकम्फर्ट था, हल्का था। क्या आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं?
1: हाँ,
0: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन चीजों के साथ। मैं ही सब सीखता, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के फिल्म बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं। फिर भी होता है ना कि दर्शक अपनी उठते बैठते सोते जाते नहीं वाला होता होता।
1: जी,
0: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? जो भी कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
1: दिलीप कुमार,
0: प्रदीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: प्राण,
1: ऋषि कपूर,
0: अमरीश पुरी,
1: अमृता,
0: प्रेम चोपड़ा, अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
1: जी,
0: है? फिर जयपुर में सारा जी, इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दें,
1: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
0: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
1: जी,
0: जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
1: जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म होगी,
0: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से शरीन साहब मेरे से खफा हुई थी,
1: क्योंकि आप जाने साहब के साथ
0: मैं अलग हो गया ना, उनको उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी होगी, मैंने तोड़ी नहीं।
1: जी,
0: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था,
1: जी
0: पहले मीटिंग हो चुकी थी
1: जी,
0: तो उनके पास मैं सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें, एक पहले मैं लेके गया है, वो गुजर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब वो गुजर थे, जितेंद्र एक्टर, उन्होंने कहा मेरे पास श्री देवी की डेट है,
1: ओ,
0: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा क्या ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र को गुजर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कम्प्लीट नहीं था, लाइन लगा आइडिया था, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक मतलब फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेट है, जितेंद्र ने कहा मैं ये हो सकती है डेट को फोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा, और अगर बच्चा वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुपी पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली,

0: सारा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो अलग पेयर लेते हैं, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान वो दोनों साथ में पढ़े दोस्त भी है। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते उनको बोलते ये बात, वो सोचे अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी अभी रिलीज हो उसके साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैंने उन प्रोड्यूसर साहब को लेके चावला साहब जी के चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास, इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा यह है ये हमारे सोचा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा वो मुझे रमेश बोला थे, रमेश आप यहाँ बैठिए हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं। तो उसी मैं हॉल में बैठा रहा कि अंदर बेडरूम वगैरह में थे, इन्होंने आपस में बात करी, दोनों आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बात
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा वो बातचीत क्या होगी, दोनों खुश थे। और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सर्टिफाइड है पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा तो जैसे चावला साहब ओके बोले 10% ओके,
1: वाह
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर पहले में उसको मानेंगे, तो रेमनॉल्ड लैब में गए नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंटी वो लगाई नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए स्टूडियो के नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए, तो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और वो सब वो मालिक वो आ गया रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया और लोग जमा हो गए, हाथ पर बेटा उन्होंने गड़बड़ है। तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहाँ से लेके जाओ, तो बाहर गाड़ी में उनको डाला हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल से पहले घर में क्या है क्योंकि जा चुके थे, मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहाँ वो बुलाया गया लोकल उस जगह ले उनको वहाँ पीछे सीट पर लेता हुआ था, मैं अस्पताल में बैठा था उनकी गाड़ी थी सारा वो गाड़ी यहाँ से आए और वहाँ रहते थे और चले। और इसका ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है अटक गया, फिर अटक गया

0: स्किल थी तो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ
1: हाँ
0: वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हो।
1: जी जी जी
0: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिगेट करके मैं वो कम करवा चाह रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इस तरह पर मान जाइए चल गई तो आप उसमें शेयर खरीद लिया भी
1: जी जी
0: न चली तो आप सबका ही लक्ष्य है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त का अरेस्ट हो गया,
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा जरूर ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साल में।
1: हाँ हाँ
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती होगी, मतलब तो अगली पिक्चर में देखिए आप संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के गाने में बात डाल दी थी।
1: जी जी जी
0: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो, अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई और सलमान खान ड्रॉप हो गए, जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं लगाई, मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना। लेकिन आज इस फिल्म को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, करते भी हैं, देखते भी हैं, यहाँ से करते हैं, सब है, गाने बेचते हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल,
0: और थी भी वो उस तरह की है। तो अनिल माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ बड़ी स्टार का अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े चार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूँगा, मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शिमला चलो जाओ आते हैं तुमसे शिमला शूटिंग हो वहाँ नॉर्थ में शूटिंग हो फिर जहाँ पे बोला जो जिस तरह वो लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, बड़ा कैमरा मैन लिया माजल साहब कैमरा मैन,
1: ओहो
0: के माजल, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ था डेथ होनी थी और हार्ट अटैक रेडियो करने का हार्ट अटैक तो पहले तो फिर बाद में पता चला तो उनकी वाइफ से मुझे बताया था कि उनका

आकाश पर ही कृष्ण की पूजा व्यवस्था की है। शाम के 5 बजने वाले हैं, 5 बजे आप तिरंगे राशि के प्रसारित समाचार मुख्य

sabe? Que Thank you.

आप शायद मुझसे 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आप

जरूरत ही कहाँ। ये तो वो जज्बा है जिसमें खामोशी की गुनगुनाती है। लहराते आंचल की बात न पूछिए, रह गई जो दिल में वो बात न पूछिए। इकरार मोहब्बत की अदा तो देखिए हुजूर, जुल्फी जब वो मेरे चेहरे पर बिखरा देती है, बड़ी सादगी से फिर वो मुस्कुरा देती है।

को मोहब्बत से जमा होते हैं। मोहब्बत की बात करनी मुझे मुश्किल तो न थी जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

Corba

हम 10 साल जयपुर में थिएटर किया तो लड़कपन का दौर था हमारा वो मेरे पूरे कैरियर का टर्निंग दौर था और तीन पंजाब में मुझे इससे चीजों को

0: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, भजनक मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगी रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया।
1: बाजी,

किस फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है,

life, and they're all up to you.

सुबह से बने थोड़ी देर में यानी 6 बजे आप

por boca, ¿verdad?

फिल्म हंड्रेड पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का वेबिनार प्रसंग है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मिस्ट्री मिस्ट्री के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सवाल है मोहम्मद रफी मोहम्मद आशा भोसले और साथी

छोटी प्रोग्राम महफिल अब यही खत्म होता है। ऐसे हमारे लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: नहीं दिल्ली पर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे और जरूर मुझ तक पहुँच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: संसद मार्ग नई दिल्ली 1100।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे ये जरूरी संदेश और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकनृत्य। हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी संगीत और आज के कलाकार हैं अनिल कुमार सिंह।

सेंसिटिव में आज आप सुन रहे थे लोकप्रिय लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब यही सम्पन्न होता है।

वॉरियर के लिए विशेष संदेश।

that's what that thing happens and you've got up. आज तो अपन संगीत कुछ विशेष गीतों को लेकर आया है। आज विशेष दिन है, सभी सुनने वालों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी मैं गिरा मैं राहों में तूने हाथ बढ़ाया है माँ, तेरी आंखों की खुशबू आज के दिल को भाती है। तेरे कदमों में मेरा जहाँ सुबह सुबह जगाना तेरा, माथे को सहलाना तेरा, मेरे को हंस कर भूल जाती है। अपने सब छुपा कर रह

उबड़कर भगवान की सुनिधि कैसी थी। जैसा कि संसंगीत की शुरुआत में मैंने बताया था, भारतीय संस्कृति में माँ के लिए कोई एक विशेष दिन तो तय नहीं है। माँ जीवन का हर पल ही माँ को समर्पित है। माँ की इसी विशेषता और महानता पर केंद्रित था आज का कार्यक्रम संसंगीत। संसंगीत से अब इजाजत दीजिए, उमा पाली को नमस्कार। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आत्मीय साज और आवाज रात 8 बजे आप सुनते हैं नाटकों का कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक के पहले भाग में घरों का चित्रण आप सुन सकेंगे। कल दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का रात 8:20 पर सुन सकेंगे। मिली जुली करने गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक रात 8:45 प्रसारण होगा। रात 9 बजे आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फन का और 10 बजे सुन सकेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती छाई रात। तो आपको याद दिला दें हमारी ये सभा चलती है रात 6 बजे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ये 7 बजे आप सुनेंगे रांची से प्रसारित

Thank you.

Procedor, durchsetzen.

hablar con el mundo. Pero sabes que estás por ti. और संभावित इसके कनेक्शन की जांच करने से कमांडर की मांगी है। इसलिए इसके मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में जनवाद में एक कुख्यात

तो पहली शुरुआत था जो कैसे के राजकारण से हम लोग सही जानने के बताया, यानी आयुष्मान भारत के द्वारा ये सरकार ने ये दिया तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

मैंने दूसरे दिन 12 मई को परेड की कार्यक्रम आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय गर्मी छुट्टी को निर्धारित किया।

0: विश्व शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
1: शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री

के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करे।

Ich habe mich nicht mehr so gut

ऐसी कुछ सारी प्रवृत्ति समाचार जैसे हनी पॉइंट एट में गाइड पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रतिभा

प्रदेश के लेफ्टिनेंट कुशल चंद्र ने जिन्हें सीवियर ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है यानी लद्दाख के रक्षक। ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है, इससे उनकी शौर्यता की कहानी का पता चलता है। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, यानी उसके इरादों में वो आग हो जो दुश्मनों के आक्रमणों का मुकाबला बड़ी कुशल रणनीति के तहत कर सके। ऐसा ही कुछ आपने भी किया जिससे भारतीय सेना के इतिहास के पन्नों पर आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। भारतीय सेना में ऐसे वीर अफसरों की शौर्यता एक मिसाल पेश करती है और कई पीढ़ियों को प्रेरित भी करती है। साथियों, लद्दाख वो खूबसूरत इलाका जो कई पर्वतमालाओं से घिरा अपनी सुंदरता को बयां करता है। बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां घाटियां शीतलता का आभास कराती, वहीं हरी भरी प्रकृति मन को मोह लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सुंदरता को नजर बच जाती है जिनके पीछे छिपी होती है कुछ दुश्मनों की नापाक नजरें और इरादे। वे वहाँ की खुशहाली में दहशत का जहर घोलने को आतुर जाते हैं, इसलिए वे उन पर कब्जा करने की तमाम योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारी सेना के रणबांकुरे उन्हें सफल होने नहीं देते। यही तो है उनके हौसलों की खासियत। दिल, तन और मन अपने वतन और तिरंगे

अमेरिकन के यहाँ सन 1919 को जेमूर खार ने हुआ था। आपके पिता लाहौली रियासत के पूर्व वजीर यानी मंत्री रह चुके थे।

शाबाश योद्धा अपनी सेवाएं दे रहे थे। ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ और बचपन से ही शौर्यता के किस्से कहानियां आपको प्रेरित करते हैं। कहीं न कहीं मन आतुर होता रहा कि आगे चलकर उन्हें भी कुछ ऐसा करना है जिससे उनका और उनके परिवार का नाम रोशन हो और देश में उन्हें एक पहचान।

बच्चों की वो भीम सी दुआ थी जिसमें मातृभूमि की मिट्टी की सोनी सी महक समाहित थी। और साथियों, ये वही बटालियन थी जिसमें उनके बड़े चचेरे भाई ठाकुर पृथ्वी चंद ने भी अपनी सेवाएं दी थी, जो कि एक बहादुर योद्धा रहे। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र हुआ, आजादी की हवाएं पूरी फिजाओं में फैल गई थी, लोगों के मुरझाए चेहरों पर खुशी खिलने लगी थी और हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। उस वक्त कई रियासतें भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का मन बनाए बैठी थी, किंतु वही हैदराबाद

रियासतों को भारत में विलय होना मंजूर नहीं था। वे अपना अलग प्रभुत्व बनाना चाहती थी। उधर दुश्मनों ने भी कई क्षेत्रों में अपना कब्जा शुरू कर दिया था, जिसकी भनक भारतीय सेना को न

युद्ध का मंजर बड़ा भयानक था। दोनों उसकी वादियों में गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। कोई किसी से कम नहीं था, लेकिन लेफ्टिनेंट कुशल चंद अपनी तत्परता बहादुरी दिखाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर उन्हें सिंधु घाटी के साथ लेह की ओर बढ़ने से रोक दिया। उन दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने दुश्मनों के साथ एक विशेष गुरिल्ला युद्ध से उनका मुकाबला किया। उनके साथ कई साथियों का समूह था जो उन्हें कवर दे रहा था और वे इस तरह रेंगते हुए पुल के पास पहुंच गए और पुल में आग लगा दी। उन्होंने खलकती पुल पर दुश्मनों को 24 घंटे के लिए रोके रखा। इस कारण से सप्ताह भर की देरी का दुश्मनों को सामना करना पड़ा। वे कुछ कर पाने में असमर्थ हो गए। लेह में संचार की सुविधाएं भी नहीं थी। वे अपने कमांडर से संपर्क करने में असुविधा भी महसूस कर रहे थे।

ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था। उच्च प्रशासन की सुविधा से सैनिक वंचित हो गए थे और यहां तक मोर्टार के बिना और गोला बारूद की भारी मात्रा में कमी का सामना लेफ्टिनेंट हुसैन चंद और उनकी फौजी टुकड़ी को करना पड़ रहा था। ऐसी विषम स्थिति में भी उनके हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई थी। वे बड़ी बहादुरी से युद्ध के मोर्चे पर डटे हुए थे। यही तो है हमारी भारतीय सेना के जाबाजों की खासियत। जब ये कदम बढ़ा लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, दुश्मनों को परास्त करते ही दम लेते हैं और उनकी रणनीति के आगे दुश्मनों की एक न चल सकी और इस तरह वे लद्दाख के रक्षक बन गए। इस तरह उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं को बनाए रखा और अन्य लोगों के लिए एक संदेश भी दिया कि यदि जिगर में मजबूत हौसला हो तो फतेह ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, वो एक न एक दिन पास आएगी और तब जीत का परचम नीले आकाश में लहरा उठेगा। बाद में वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति मिली और लेफ्टिनेंट कुशल चंद ने 3 साल के लिए नवी डोगरा इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। सफलतापूर्वक कमान संभालने के बाद उन्हें कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद का विदेश में एक कार्यकाल तय था क्योंकि जिस विमान में वे ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा कर रहे थे वो लाओस के ऊपर से जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ऐसी स्थिति में वे नहीं बच पाए और इस संसार से सदा के लिए जुदा हो गए। ऐसे वीर जाबाज ऑफिसर की मिसाल हम सभी के हृदय में जिंदा रहनी चाहिए। साथियों, भारत सरकार द्वारा उन्हें सन 1950 के महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी ऐसी वीर बहादुरी को शत शत नमन, सलाम और प्रणाम। साथियों, लद्दाख घाटी की आने वाली पीढ़ियां हमेशा उनकी और उनके जवानों की

परमेश्वर गाथा खिचड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र सम्मान से सम्मानित लेफ्टिनेंट कुशल चंद के अदम्य साहस से भरी शौर्यता की कहानी। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शोध आरेख और स्वर मंत्री वर्मा का संयोजन और प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंत्री वर्मा को दीजिए।

इकट्ठी की गई जहाँ बुलाया गया। तो जैसे भाई के साथ एक आवाज है, कब्बन मिर्जा साहब बुलाया, उनको सुना तो आवाज़ तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल दादा है ना, आई जंजीर की झंकार, खुबा है। तो उसमें जो रिजम है जंजीरों का,

शालीमार फिल्म की ध्वनि। अगली से सुनिए यही गीत किशोर कुमार और साथियों के आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा हुआ

सेंचुरी पर बजाई फिल्म प्रेम गीत की ये धुन अभी आपने सुनी। कलाकार थे पारस दास। आज ऐसी फिल्म जसजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म का ये गीत, गीतकार है इंदिवर और संगीतकार है जसजीत सिंह।

0: सब कुशल मंगल तो है प्यारे लाल जी।
1: आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है पंडित जी।

0: असल में ससुराल जाने का इरादा है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई शुभ मुहूर्त इस यात्रा के लिए आप बता दें तो बड़ी कृपा हो।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं,
0: शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ दिन, सब कुछ आपको बता देता हूँ। जरा पत्ता देखकर अभी बिताता हूँ।
1: जी,
0: इससे पहले आप कितनी बार ससुराल हो आए
1: हैं? पंडित जी, सच बात तो यह है कि अभी तक मैं एक बार भी ससुराल नहीं गया। ये मेरी ससुराल की पहली यात्रा होगी।
0: क्या क्या क्या क्या कहा यजमान, क्या इसके पहले आप एक बार भी ससुराल नहीं गए?
1: जी नहीं,
0: इस युग में ससुराल की यात्रा में इतना
1: विलम्ब,
0: ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो लगता है आप जरूर कुछ भूल
1: रहे। पंडित जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ कि ब्याह के बाद आज तक मैं ससुराल नहीं गया।
0: जरूर कोई कारण होगा, कोई बात नहीं।
1: पंडित जी, बात यह है कि मुझे पहले बड़ी शर्म लगती थी और फिर मेरी पत्नी मालती ने भी मुझसे कई बार कहा, लेकिन पंडित जी क्या करें, कोई जुगाड़ ही नहीं लगा। अब गलती हो ही गई।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो आज कौन सा दिन है?
1: आज
0: रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी तीन दो पाँच, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। भगवान भला करे, मंगलवार को प्रातः 4:21 से पूर्व ही आपकी यात्रा का योग बन रहा है। इसके बाद कोई योग नहीं बनता।
1: ठीक है ठीक है पंडित जी, हम वक्त से पहले ही निकल जाएंगे यात्रा के लिए।
0: आयुष्मान, भगवान भला करे।
1: अरे पंडित जी, मैं तो भूल ही गया था, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। कीजिएगा, जल्दी में था ना, इसलिए भूला जा रहा है।
0: भगवान, ससुराल को जा रहे हो, भूलोगे क्यों नहीं? ससुराल के लोग कैसे देखे?
1: अरे नहीं पंडित जी, ये तो इस वक्त तुम मुहूर्त निकालने के लिए मात्र पत्र पुष्प अर्पित किए हैं। ससुराल से लौटने पर तो मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ आपके दर्शन को आऊंगा और गांव से जोड़ के आपके

0: कर दिया पंडित जी ने।
1: तुम जितना आसान समझती हो मुंह उससे आसानी से नहीं निकलता है। जैसे बगुला पानी में खड़ा खड़ा मछली को दबोच लेता है ना, ठीक उसी तरह हमारे पंडित जी भी पता में आप पहले तो गड़ाए रहे और फिर मुहूर्त मिलते उसे दबोच लिया। अरे आज मैं पंडित जी को मान गया।
0: अरे बस होगी क्या, अरे बखान ही किए जाओगे। मैं ये भी बताओगे मुहूर्त कब का किस दिन का निकला।
1: अब तैयारी करो तुम जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है, केवल 3 दिन का मामला है।
0: अरे हाँ भैया, क्या प्यारे आए गवा।
1: हाँ अम्मा, मैं आ गया। अरे अम्मा, पंडित जी ने तुम हो जैसे निकाला ना, मैंने दक्षिणा उनके मुंह पर ठोकी और सीधे घर आ गया।
0: अरे तो साफ साफ बतावत चाहे नहीं है भैया कि पंडित जी ने किस समय की मुहूर्त की बात की है। अरे बच्चन की तरह फवारा का ही गाय रहे।
1: अरे अम्मा, मैंने मालती से पहले बता दिया कि अब ज्यादा समय नहीं, केवल 3 दिन बाकी है। पंडित जी बोले त्रयोदशी अर्थात मंगलवार।

0: की बात बतावे के लिए इसका माता कहता है कि कौन सी जरूरत रहे भैया। अरे बहू इसी ढेर कोई समय ज्यादा नहीं है, तू इसके भरोसे ना रहना, सारी तैयारी पूरी कर समझ गई। कि अरे इसका क्या थी, पहन बखत से पता चलेगा कि कपड़ा लगता ही ठीक नहीं किया।
1: अरे मालती कान खोल कर सुन लो, मेरी पहली पहली ससुराल की यात्रा का मामला है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ए, ससुराल वाले भी समझ जाएंगे कि कोई दामाद राजा आया है।
0: क्या बीनोग आप कुछ समझे नहीं है क्या?
1: जब समझे थे तब के प्यारे लाल और आज के प्यारे लाल में बड़ा फर्क हो गया है। और श्री प्यारे लाल को समझने के लिए भेजने की जरूरत समझी, कोई आसान नहीं मुझे समझना।
0: अरे बहू तुम भी बेकार ही इसके मुँह लगी हो, जाओ अपना काम करो। माजी इनको समझा दीजिए, अगर इसी तरह वहाँ जाकर भी बड़बड़ाया करेंगे तो लोग क्या कहेंगे?
1: अरे कहेंगे क्या है, प्यारे लाल की बातों को प्यारे लाल को अब समझना कोई आसान काम नहीं रहेगा। तुम लोग क्या जानो प्यारे लाल और उनकी बातों को,

0: किसी का पता चल ही जाएगा।
1: तुमको भी बड़ा गुमान है ना अपने मैके वालों को। मैं भी अब देखता हूँ उनको वहाँ जाके।
0: जाइए जाइए, जी भर कर देख लीजिए। अरे कहीं महंगी न पड़ जाए आपकी पहले।

0: गोपालपुर गांव अभी कितनी दूर है?
1: गोपालपुर गांव
0: जी।
1: अरे भैया, गोपालपुर नाम का गांव इधर तो कोई है नहीं।
0: भाई साहब, यही कहीं गोपालपुर गांव है। अरे यही तो मेरी ससुराल है। असल में रास्ता भूल गया था, इसलिए आपसे पूछा।
1: स्टेशन के कौन तरफ है यो गांव?
0: स्टेशन से इधर ही बिल्कुल पूरब की तरफ।
1: राम राम राम। अरे भैया, तब तो आप बिल्कुल ही गलत आए गए। अरे आप तो स्टेशन से पश्चिम काफी दूर चले आए।
0: पश्चिम?
1: अब ऐसा करो, पुनः स्टेशन लौट जाओ और स्टेशन से पूरब की तरफ 3-4 मील दूर कोई गोपालपुर नाम का गांव है।
0: अरे तो
1: वहीं किसी से पूछ लीजिएगा।
0: अरे सुनो सुनो सुनो, तो ये स्टेशन से पूरब नहीं है क्या?
1: भैया, तब तो लगता है कि आपको दिशा भ्रम हो गया।
0: अरे राम राम, तब तो भाई बड़ी गलती हो गई।
1: अरे कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है।
0: भाई साहब सुनिए सुनिए, एक बात बताइए, क्या आप स्टेशन मेरे साथ वापस लौट कर सकते हैं?
1: भाई वाह, मैं क्यों लौटूं? क्या मुझे कोई दिशा भ्रम हुआ है? आप कैसी बातें करते हैं भाई साहब?
0: अरे भैया, यही बात तो मेरी बीवी मानसी भी कहती है। आप कैसी बातें करते हैं? सुनिए, क्या आप मेरी ससुराल के रहने वाले हैं?
1: अरे जाइए जाइए, अपना रास्ता लीजिए। आप क्या कहते हो? आपकी दीदी क्या कहती? मुझे क्या लेना देना है? न मैं आपकी ससुराल का हूँ और न मैं आपको जानता हूँ। अरे रास्ता भूल गए हो तो बदला दे रहा हूँ, वरना अपना रास्ता लीजिए आप। रात हो जाएगी तो अच्छी तरह ससुराल पहुँच जाइएगा।
0: हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज तो तुम बुरे फंस गए प्यारे लाल। चलो बेटा वापस स्टेशन। तो क्या वाकई मुझे दिशा भ्रम हो गया? मैं तो पंडित जी से बहुत पूछते चला था। ये ससुराल की यात्रा भी जीवन भर याद रहेगी। न कोई सवारी, न कोई सुविधा, बस पैदल परेड। हे भगवान। किसी से पूछ लेता हूँ, कहीं बेकार में फिर से परेड करनी पड़ जाए। सुनिए भाई साहब सुनिए।
1: हाँ कहो।
0: मैं पूछ रहा था कि मैं स्टेशन से पूरब की तरफ जा रहा हूँ ना?
1: बिल्कुल ठीक, पूरब की तरफ जा रहे हो। जाना कहाँ है?
0: जी मुझको गोपालपुर जाना है। वो सामने वाला गांव क्या गोपालपुर ही है?
1: बिल्कुल ठीक पहुँचे, वही गोपालपुर है। सतर से लागत तो पहले पहला है।
0: इस गांव में मेरी ससुराल है।
1: गोपालपुर में तुम्हारी ससुराल है?
0: जी
1: है? हम भी सकल का देख रहे हैं। काम हो गई है, रास्ता तुमको मालूम नहीं? कहूँ रास्ता भूल गए तो जल्दी जाओ।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बड़ा करना था। बड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नगर की जे सब काजा, बेरा की कौशल पुर राजा। अरे इससे भूख रहे, कहीं पास न ले। दिन दयाल व्रत मारी, अरे नाथ संकट भारी।

0: खून निकल रहा है
1: मेरा। प्यारे लाल, तुमने इतनी देर लगा दी, आना ही था तो पहले खबर कर दिए होते।
0: अरे बाबू जी,
1: कोई बैलगाड़ी लेकर स्टेशन आ जाता। प्यारे लाल, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। देखे भैया कहाँ काट लिया।
0: देखो बाबू जी, पाओ मैं
1: जवाई बाबू को ही काट लिया। अरे जा मर, क्या देख रहा है, पानी लाकर घाव धो और तुरंत जाकर वैद्य जी को बुला रहा है।
0: अरे अब वैद्य जी आगे क्या करेंगे बाबू जी, अरे इसके लिए तो बस एक ही दवा है, सुई।
1: अरे
0: सुई वो भी लगेगी अस्पताल में कल सवेरे।
1: मर गए
0: मासी, तुम्हें अपने मायके का बड़ा

big, come on.

हाथ से ना देखा यात्रा प्यारे लाल की। इसे लिखा कल्पना सिंह ने, निर्देशिका चंद्र प्रभा भटनागर। अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुत।

कम से कम 10 साल जयपुर जीते किया तो इंश्योरेंस फंड का दौर था हमारा जिस बहुत ही परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था टीम का जवाब दी इसलिए मुझे उसके तरह से इन चीज़ों को हवा दे और सरकार करने का अवसर दिया मुझे पढ़ा जाने की उड़ान बाकी सब इंडियन उड़ान बाकी और जब जी जी के साथ शुरू हो गए किसी शायर के साथ नहीं हुआ

साथ और संगीतकार थे।

que realmente Dios, y si vivir en

0: कम 10 साल जयपुर में अंतर किया तो एक पुनरुत्पन्न का दौर था हमारा।
1: विविध भारतीय परिवार की सदस्य राजेश,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। टीम का जवाब नहीं मुझे अच्छे तरह से इन चीज़ों को हमार दें और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ
0: मैंने पढ़ा मैंने कितनी उड़ान बाकी परिंदे में उड़ान बाकी और जब बीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आपके मामा

हूँ और साथ ही आवाजों में आप सुन रहे तमाशा प्रेमी का गीत एक साथ का मैंने इस गीत को लिखा था और

सेवा देश की सिविली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल में सुनेंगे।

कांग्रेस के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभात पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभात पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्य से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हरमंदिर जी गोयल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मधुर सोलंकी।

दिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 63 रन के शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। 16 मिनट तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट राजस्थान की अलमारी में

0: done. It's just not a pizza like that sun hit the GM from off to left millisecond. Monkey Bite. To find the teeth on a fresh plain test.
1: The monkey bite is a secret. मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज दें तो सुझाव देंगे जरूर मुझ पर पहुंचे।

दोनों करके महामद्रति के आवास में आपसे लड़े थे, वो राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत से सजाया था स्क्रिप्ट को रचित।

सुमन कल्याण को किया गया था। वो लिखे थे नजरें सुल्तानपुरी में दिन बनाई थी रोशनी। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं शिकारी फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर उषा मंगेशकर की है। फारूक कैसर ने इस गीत को लिखा है और जी एस कोहली ने

Father, being in the spirit, the light of Papa.

पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क देवेंद्र नाथ टैगोर से हुआ, जो कवि रविंद्र के भतीजे थे। उन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर से रविंद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रविंद्र नाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बहुत योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से 11 फिल्मों में

हर सम्राट की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रही और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन कर

शुरुआत समय बीता दौर बदले कायम है। सिंधी की मधुर पाठशाला।

अगर हमको विश्वास है समझ गए जाने कहाँ से शुरू होता है।

कृपया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।